जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल सच नाए। मेरे मन

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राखदा।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईऐ नेदा राय आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिया दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखै सुने हदूर साधो घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखशिंद। श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर राखी उर तार। मेरे मानो हर बिने अवर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक। जिन कीता तिसै ना जाणई मनमुख।

आए कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवे पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईया दरगह पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किश्त सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निम

सहजे शिव तीर्थया भवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइए साधु तूर लूक मावै किस्ते जां वेखे सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसे सो विलसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावे दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसे ना जानई फिर आवे जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखे सो रहे समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

सतगुर से प्यारो, क्या थोड़ी बात गुमानो रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवा, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया ता तनखा कूराल। मन बैराग पया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसया कंत कार।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लो अगमे अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सो सायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजे।

अंबड़ कोई न सकई, हो किसनो पुछण जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबल हार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पेरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूझना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिलै आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आसर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लगई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हमें तृष्णा मार कै सच रखिया उरता।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करे विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त्र लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्लै पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचे नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मनमस

पार संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिस्काल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वा पारी वन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाइए रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाइए सर प्यार मुक्त पदार्थ पाइए अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावै सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए।

दाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर भय का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविए गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिया लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटिया गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाईए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चातरक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता आपे बस मिलाए जी जनते क्या विचारे क्या को वख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराए देख कुटुंब मोहे लोभाना चल दिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई पेई अड़ै जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मनी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करै दिन राती हौ मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सचे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजाय हमै कृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हमै दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सत बलिहारै जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वछर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला।

श्री राग महल्ला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी।

हर निर्मल अतु जला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बूझे पेखी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए, माया मोह चुकाया गुरमति सहि सुभाए, बिन शब्द जग दुखिया फिराए, मन मुखा नो गई खाए, शब्दे नाम त्याईए शब्दे सच समाए, माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए, तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए, माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए, बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए, शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महा

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछात।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहने, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मच पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरै निमाणिया, मैले वेस्त ना कामणी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्हां नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्हां भाणे कार सियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करै निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करै जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करै जयकार जियो।

हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेता चेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे ना जाने।

मात पिता सुत नेह कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तु तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा।

मित्रा, हरनामा हर ना संभालो, हरनामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चले पछताई।

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धारा अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंथ फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े। नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम भगत विश्राम। आसा लग जीवते जियो मन तने गुलतान। सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते। बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे। साध संगत निदमानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे। हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा। जप जप नानक जीवते। डखना जो तौ कीने अपने तिन्ना कु मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे। संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोबिंद मन मोया जियो। संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो। हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए। मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए। सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होहया। कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया। डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो। जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी। कर गए लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया। कथ ना जाय अकथ स्वामी सद कह जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो। हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर। हर एक सह दा है अमर एको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सब नी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट दस चार।

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख हो वै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन एथे उथे मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर

व्यास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नामै अगै आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखणी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौपे कंत कौ, सब दे तरे प्यार। बिन नामै कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएं दे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोय। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दी ओए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया कर अपना, पर पुरखे नाल प्यार। तृष्णा करे न चुके, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै कूप सोहणी, पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा। शब्द रती सोहागणी, सतगुर कै पाए प्यार। सदा रावे प्रे अपना, सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी, शोभावंती नार। नानक नाम सोहागणी, मेली मिलनहार। पौड़ी। हर तेरी सब करे उस्त, जिन फाथे काढ़िया। हर तुदनो करे सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। हर निमाणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए, मन मुख मूड साध्या। हर भगतां दे वड्याई, गरीबा नाथिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है, गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिने अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया, तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या, तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया, गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी। हर की भगतां प्रतीत, हर सब के जानदा। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय, जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ, पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा, यंत्र रखा और तार। साला ही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हित प्यार। नानक जिस नदर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नदर करे। मानस ते देवते पए, तया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन, गुर कै सब तरे। नानक सहि समायन, हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी। हरे अपनी भगत कराए, वड्याई वे खालियन। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेव कालियन। हर भगतां नो दे आनंद, थिर करी बहालियन। पापियां नो ना दे थिर रहन, चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला।
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਤ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋਟ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਿਹ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਧ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਅਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ

रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो, माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यों तुद ते आई, एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो, जिसदा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाणै जियो प्रभ मिरने की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किछु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपुरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समर्थ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माज महला पंजवा अथे तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओहो अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नेह चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमति सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे भाग

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बन जे सदा वापारी लाहा नाम सद पावने आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जै के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुण दाता।

आपे देवै सद बुलाए, अपना नाउ मन वसाए, नानक नाम मिलै वडियाई, अंदन सदा गुण गावणिया। माज महला तीजा। ऊतम जन्म सुथान है वासा, सतगुर सेवै कर माहे उदासा, हर रंग रहै सदा रंग राते, हर रस मंत्र बतावणिया। हाँ वारी जियो वारी, पढ़ बुझ मन वसावणिया, गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है, दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ अलख अपेओ हरया समाए, उपाय न किती पाया जाए, कृपा करे ता सतगुर भेटे, नदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे, त्रिबद माया कारण लूजे, त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी, गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल वस ना आवै, दुबदा लागै दै दिस्तावै, बिखका कीड़ा बिख मै राता, बिखी माए पचावणिया। हां हों करे तै आप जनाए, बहु कर्म करै किछ थाए न पाए, तुझते बाहर किछु ना होवै, बख्शे शब्द सुहावणिया। उपजै पचै हर बूजै नाही, अंदन दूजै पाए फिराही, मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता।

कर कृपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा, मनमुख पड़े पंडित कहावै, दूजे पाए मह दुख पावै, बिख्या माते के सूजै नाही, फिर जूनी आवणिया। हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मिलावणिया, गुरसेवा ते हर मन वसिया, हर रसैच पियावणिया। रहाओ वेद पड़े हर रस नहीं आया, वाद वखाण मोहे माया, अग्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिय शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सचो पावै, आपे दे न पछोतावै, गुर कै शब्द सदा सजाता, मन सचे सुख पावणिया। कूड़ कसात तिना मैल न लागै, गुर प्रसादी अंदन जागै, निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पड़े हर तत न जाने, मूलो पूले गुर शब्द न पछाने, मोह व्यापे के सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिपद माया, मनमुख न बूझे दूजा पाया, त्रै गुण पड़े हर एक न जाने, बिन बूझे दुख पावणिया। जात पावे ता आप मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए, नानक नावे की सची वड्याई, नामो मन सुख पावणिया। माज महला तीजा, निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत् पछाणै सो पंडित होई, आप तरै सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर रस चख साध पावणिया, हर चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। रहाओ सो निह करमी जो शब्द बिचारे, अंतर तत् ज्ञान हौ मैं मारे, नाम पदार्थ नौ निध पाए, त्रैगुण मेट समावणिया। हौ मैं करै निह करमी ना होवै, गुर प्रसादी हौ मैं खोवै, अंतर बिबेक सदा आ विचारे, गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगै नित गुरमुख होई, इसनान करै सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर्वसै हौ मैं मार, अहनिस प्रीत शब्द साचै, हर सर्वसा पावणिया। मनमुख सदा बग मैला, हौ मैं मल लाई, इसनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द विचारे, हौ मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, कट चानण आप पछाननिया। आप यो पाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सोजन लेखै, नानक नाम वसै कट अंतर, गुर कृपा ते पावणिया। माज महला तीजा, माया मोह जगत सबाया, त्रैगुण दिसै मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बुझै, चौथे पद लिवलावणिया। हाँ वारी जियो वारी, माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर सो चितलाए, हर दर महली सोभा पावणिया। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया, काम क्रोध पसेरा संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जत सत संजम सच कमावै, गुर पूरे नाम ते आवणिया। पेयड़ तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवै गावाए, सुपने सुख ना पावणिया। पेयड़ तन कंत समाले, गुर प्रसादी वेखै नाले, पिरकै सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एको रव रहया कट अंतर, मेर सत संगत हर गुण गावणिया। सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मनमुख नाम चेतना आवै, बिन नावै बहुत दुख पावणिया।
जिन सिहट साजी सोई जाना आपे मिले शब्द पछाण नानक नाम मिलिया तिन जिन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा आद पुरख अपरंपरिया पे आपे थापे थापो थापे सब मैं वरतै एको सोई गुरमुख सोभा पावणिया। हाँ वारी जियो वारी निरंकारी नाम ते आवणिया ते सरूप ना रेखिया कड़ कड़ देखिया गुरमुख अलख लखावणिया। रहाओ तू दयाल किरपाल प्रभ सोई तुद बिन दूजा अवर ना कोई गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सिरजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजै सह समाद लगावणिया। आन दिन गुण गावां प्रभ तेरे तुसा लाही प्रीतम मेरे तुद बिन अवर ना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। आगमया गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करै तू लह मिलाई पूरे गुर कै शब्द तिहाई है शब्द सेव सुख पावणिया। रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे पावै गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अहंकारी जुवै जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गोबारा फिर आवण जावण आ। आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिख तुर पाई नानक नाम मिले पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावणे आ। माज महला पंजवा घर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया आगमै गोचर सब ते उचा गुर कै शब्द लिखावणे आ। हाँ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावने आ संत प्यारे सच्चे तारे वड भागी दर्शन पावने आ। रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिर दे ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे कोट ततीसा खोजै ता कहो गुरमिल हिरदय गावने आ। आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरना खानी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया। साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से तृपता से सच्चे साचा गावणिया। तिस घर सहजा सोई सोहेला आनंद विनोद करे सदकेला सो धनवंत।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक

अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवणिया।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बने अवर न जाननिया। जिस कहो तू प्रभु पया सहाई, तिस तत्ती वाव न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवां घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ, मूला मनो विसारीऐ। रहाओ संता संगत पाईऐ, जे जमकै पंथ ना जाईऐ। तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलै न लागै गाल जियो। जो सवरंदे साई है, नरक न सही पाई है। तत्ती वाव न लगई, जिन मन उठाया जियो। सही सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे। हर तन जिनी संजया, सही गंभीरिया पार जियो। हर अमे और साइन पीवी है, मोह डिठे जन कै जीवी है। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो, मस्तक जिसदै भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मै का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै भंजन की सरनाया। लाए अंचल नानक तारिया, जिता जन्मया पार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवां घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे, रहाओ सिमर सिमर गुर देओ। मिट गए पै दूरे, सरन आवै पार ब्रह्म की, ता फिर काहे झूरे। चरण सेव संत साध के, सगल मनोरथ पूरे। घट घट एक वर्तदा, जल थल महियल पूरे। पाप बिनासन सेवया, पवित्र संतन की धूरे। सब छड़ाई खसम आप, हर जा पई ठरूरे। करते किया तपाव सो, दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सच नाए, हर वेखै सदा हजूरे। बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, किते ना आवै काम। जल बिन साह कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइये विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। वैसाख तीर्ण क्यों वाडिया,
ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈਵ ਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगै सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनके सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

से पादोए नरक ना पाइए गुर रखन वाला हेत असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी वसंदियां।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदारण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता उड़िया हंस दसायरा आया गया मोया ना पिछे पतल सद्यो का नानक मन मुख अंध प्यार बाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बाल तन बीसरवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै।

मुंडम डिठ मैं नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खिजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चे आ बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला।

क्या खादा है क्या पैदा होए, जामा नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह के हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस का सो टटर पाइए तपे तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जय नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, कर संत सलाम लिखिया पावसी।

पीसो कुत्ती तात बोला जे समझाई है पढ़िया सिमरत पाठ। अंधा चानन रखी है दीवे बलै पचास चौने सोय ना पाई है चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाई है टह ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला तैहा कंचन तुटै सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती तुटै पतार पुत्ती गंड पवै संसार। राजा मंगै दितै गंड पाए भुखिया गंड पवै जा खाए काला गंड नदियां मीह झोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरतै संसार मूर्ख गंड पवै मोहे मार। नानक आखै हो बीचार सिफती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बीचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाईऐ खोटे सटियै बार वार खोटे सच्ची दरगै सुटियै किसे अग्गै करै पुकार सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सच्ची दरगै मनियन गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। सलोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया मेर वद बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला ना दादे देहां दे आदमी ना सबत जेर जिमी अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन्न पौन थिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर देहंद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया सोए मेटना साकै कोए कला धरै हिरै सुई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया विण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला सिंह बाजा चरगा कुहियां इन्हां

मोए कथा उपाही 68 तीर्थ दिन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खाही सदा कुचील रहे दिन राती मथे टिके नाही चुंडी पाए बहन नित मरना दर्दी बाण ना जाही लकी कासे हथी फुमण अगो पिछी जाही ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दै विगोए फिरे विगुते फिटा वत्ता ए गला जिया मारजी वाले सोई अवर ना कोई रखे दानो तै स्नानो वंजे पस पई सर खुथे पानी विचों रतने उपन्ने मेर की आमा दानी 68 तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नायन वाजा ना तै पूजा नावनो सदा सुजानी मुया जीवदियां गत होवे जां सिर पाई है पानी नानक सिर खुथे सैतानी एना गल ना पानी वुठे होया होए बिलावल जियां जुगत समाणी वुठे अनक मादक पाहा सबसे पड़दा होवे वुठे कहो चरे नित सुरही सातन दही विलोवे तित के होम जग सद पूजा पया कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चांदा नेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान हो रिया मन जानिया सच जे मंगे दान से तुदै जेहया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया मन्या ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया कर्म पवै निशान न चले चलाया तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया नानक मंगै दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिवती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देओ महला पहला आप बुझाए सोई बूजै जिसे आप सुझाए ते सबके सूजै कह कह कथना माया लूजै हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्ब विचार अखर नानक अखे हो आप लह प्रात होवे जिस दात पौड़ी हाउ टाडी वेकार कारे लाया राध है कै वार तुरो फुरमाया टाडी सच्चा महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया टाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सा लाहे पूरा पाया सुध राग गौड़ी गुआरे री महला पहला चौपदे दोपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद पाओ मुझ पारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल सिर तर चलिए सहिए पार नदरी करमी गुर बिचार पै बिन कोय ना लंघ सपार पै पाओ राखिया पाए सवार रहाओ पै तन अगन पखे पै नाल पै पाओ कड़िए शब्द सवार पै बिन काड़त कच्चन कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाओ सह सियाणप पवै ना ताओ नानक मनमुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दवाओ गौड़ी महला पहला डर कर डर डर डर जाए
ਸੋ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਡਰ ਡਰ ਪਾਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੈ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਜੀਓ ਮਰੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਤਰੈ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਹੰਸ ਹਿਤ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਨਹਿਸਾਨ, ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰ, ਬਿਨ ਖਾਦੇ ਮਰ ਹੋਏ ਗਵਾਰ, ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਏ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕੋਏ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਧਨ ਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਵਿਸੇਖ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਉ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਰਹਾਓ ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੁਇ ਸਸਰ ਭਏ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ, ਸਾਹ ਸੰਯੋਗ ਵੀ ਆਹੋ ਵਿਯੋਗ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पट पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ। जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, एतुत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सदगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली, बाजी यो संसारो लब लोभ मुझ कूड कमावे, बहुत उठावे पारो, तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यों तारी ऊपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तो दियाखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ होई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया, हालत

केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। हाट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछों देखे, तू ते कहां छुपावे। तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, कठी मैवन जारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरुख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मंदासा, हमें मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकरवासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुंडप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

गुरमुख नाम निधान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीनियो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार जन नान करमी पाईयां नू हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरे पेये पिर वसै कहो किद बिद पाईए आप निरंजन अलख है आपे मिलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईए वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईए हों मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईए संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिलियो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर ध्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिव लाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

हरी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे हरे आपे वेखै विकसै आपे हरे आप जपाए आपे हर जापे हरे आपे सारंग अमृत तारा हर अमृत आप ही आवनहारा हरे आप करे आपे निस्तारा हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा हरे आपे गुरमति निस्तारा हरे आपे नानक पावे पारा गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हमले हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे हम जारे राम के हर वणज करा।

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर पावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछ।

करण करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतरजामी, सर्व सुखा सुख साचा एहो, गुर उपदेश मन मैं ले हो। जा कहो राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो धन वड भागी, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा।

हर हर नाम जपत जंतार्यो, अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन का लै पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बजै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करना हार, अंत नाही किश पारा वार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से आन पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

कर जाता। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साद, चाखत होए रह बिस्माद, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर ते आओ, आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसने अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो, कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

तुम राखो तिव ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संग्रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हिजात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, सा संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेराट है, जिस सिमरत जम किशु नाम कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं हमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुरपैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुख्या नंद असहज सुख्या नंद निदान, रखन हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिनसे पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखे बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोला वै राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावै कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावै सर्वनिदान गुरु ते पावै आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जानी ऊपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वनिदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सरमनदान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निदान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिलै वड्याई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का माने हर बिसर तो काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहुत अरण्यागास जाकी ज्योत जी प्रगास जाकी बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरणी पाहे कोट कलंक।

मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावै बहु जोन पवाइय, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमान, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, हाव तन मन तो पालक सचनाए, हर गुण गावै सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल, खावै खर्चै रल मिल पाई, तोट ना आवै वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखिया भरपूर।

गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहालो, जिस कर कृपा सदगुरु मिले दयालो, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, आपन तन नहीं जा को गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सदगुर ते पायो। रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आ बाप ना माई, सोयना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया, तिसका सब किश जिसका हर राया। गौड़ी महला पंजवा, गुर के चरण उपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, सतगुर अपने कहो कुर्बानी, आत्म चीन परम रंगमानी। रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी, अहम बोतन सगल त्यागी, गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा। गुर सुखदाता गुर करतार, जी प्राण नान गुर आधार। गौड़ी महला पंजवा,

हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमरत त्रा सबनास है, सा मत पूरी जित हर गुण गावे, वड्डे पाक साधु संग पावे रहाओ। साध संग पाइए नित नामा, सा संग पूर्ण सब कामा, हर की भगत।

गुर का शब्द तेरा संग सहाई, दयाल पाए सगले जी भाई, गुर पूरा जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे ढोर, मुह की चेवरी बांध्यो चोर, मृतक देह सत्संग बिहुना, आव जात जोनी दोखी ना रहाओ। अनक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत महे डराया, सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानुख जपै नहीं नाम। कहो नानक जा कहो भय दयाला, सा संग मिल पजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवारे।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिरस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवां, भले दिनस

संतै संग बैस गुण गाए ताका रंग ना उतरै जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से पए निहाल कहो नानक गुर पए है दयाल। गौड़ी महला पंजवां सिमरत स्वामी किल विखनासे सुख सहज आनंद निवासे। राम जना कौ राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ। साध संग कश

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर तन को वा पारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सात आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन।

तिसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोड़ जन्म पर मैं बोजूना रहाओ। सागत की ऐसी है रीत, जो कुछ करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकर मनो बिसारिया। बदे बिकार लिखे बहु कागर, नान कुदर कृपा सुख सागर, पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काट हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पादीत, ऐसा मीत करो सबको, ए जाते बिरथा कोई ना होए। रहाओ अपने स्वायर दल धारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गिद्धी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनक बार

कोट बिघन हेरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खोतास, रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जा कर दैवसै भगवान, औखद मंत्र तंत सब शार, करने हर दे मैं तार, ताज सब परम पजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाल्यो धर्म, गौड़ी महला पंजवा, कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग न व्यापै कोई, राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर, रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पय काम, जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पय सहाई, मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, बिखै राज ते अंदला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई, माया मगन नरक लै जाई, रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ, चरण कमर स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत, सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हरे अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए, सर्व कला पूर्ण प्रभ सोए, रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभ खिन मैं पारो तारण हार, अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे, गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर कीर्ति।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रम बिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभुदय निवास। सगल दुख का होया नास, आसा मान तान तन एक। साचे साह की मन में टेक, महा गरीब जन साध्या नाथ। नानक प्रभ राखे दे हाथ, गौड़ी महला पंजवा। हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ मना बसाही। डरपत डरपत जन बहुत जाही, रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समर्थ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओ मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ, तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक।

राम रवत सधी सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवै हथ दाना। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा धारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे काज सुवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबै जलाओ, हर संग राते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारै नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागे, हर संग राता अंदन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौनस है। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दो गए। नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल घर आए, पेटत साथ संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्त्र पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाय गोपाल। पाप मिटाए साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदे बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै भाई, अपने सेव की आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवा,
अपने सेवको आप सहाई, नित प्रतपारै बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए रहाओ। आप मन बसिया करना हारा, पह बिनसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण पाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई रहाओ। जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रपत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौड़ी महला पंजवा, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गै लेहो अंगुरिया रहाओ। श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारा बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार, जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार, शरण समाई दास हित, ऊचे अगमे अपार। सगल पदार्थ अहिट सिद्ध, नाम महारस माहे, सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुतबंध पो, तू मेरे प्राण आधार, साध संग नानक भजै बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड़ भागी, ब्रह्माद को सनकाद पिचा है, जोगी जति सिद्ध हरिया है, जिसे प्राप्त सो हर गुणगा है, ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वड़ भागी हर संत मिला।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काढ़ किए नह केवल जब ते हमै मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचै कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाचै गौड़ी महला पंजवा हों ता कै बलिहारी जा कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की केत गनिया जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज अनंत ना संग उन संसार अवर नान दाते जगत उदारण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर ऐसो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन आवाद जो दिसै सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर ते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो।

माया के बंधन काटै, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनाओ, सगल त्याय ले मीता, हर औखद जां को गुरदिया, ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तांते, गुर शब्द दीपक प्रगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा, बोइथ साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तां तृप्तिया गाए, नानक हर जियो तां को देवै, जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी, अंध कू मैं हाथ दे राखो, कछु सियाण उक्त न मोरी। रहाओ करन करावन सब किछ तुम ही, तुम समर्थ नाही अनहोरी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै, जैसे दृष्ट्यो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही, एक जन कई मैं लाख करोरी, जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा, आन दिन कीर्तन रस नरमोरी। तुम समराथिया पार अतूचे, सुखदाते प्रप्राणिया दोहरी, नानक कहो प्रभु की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा, तुम हर सेती

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे। गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे। कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन मोलक साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग त्याग चलो है मूढ़ नंग। चोवा चंदन दे फूलिया सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा मन तार तर बेहर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुरबोइथ पार ग्राम नो रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया। मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड्डे पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने गृह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक। राज जोबन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी। इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान। गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिय संत संग हर मन वसै परमोह पौसा दिय रहाओ। वेद प्राण सिमरत बने सब ऊच बरायत जन सुने। सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिरै गोविंद लोक नहीं जन्म मरै। बल बुद्ध सियान पहो मैं रही हर साध सरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय सास सास हर त्याय रहाओ। संत संग हर मन वसै दुख दर्दा नेरा प्रम नसै। संत प्रसाद हर जापिय सो जन दुख ना व्यापिय। जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते। नानक कहो प्रमया कर मेरे मंत्र वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहां सुख आनंद कना आगे जी कै संग काम रहाओ। कटिए तेरा अहंग रोग तू गुर प्रसाद कर राजयोग। हर रस जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया।
ਹਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਇਆ ਸੋ ਬੌਰ ਨ ਕਤਹੀ ਤਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਪਉ ਗਿਆ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕੋ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਵੈ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਕੈ ਕਰ ਤਲ ਨਵ ਨਿਦ ਸਿੱਧ ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤਨੀ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕੈ ਕਮੀ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਨਿਆ ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹਰ ਤਨ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਸੈ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰਭ ਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਹੁ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ ਬੇਬਰਜਿਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ ਉਵਾਹੂ ਸਿਉ ਰੇ ਹਿਤਨੋ ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਲੈ ਜਿਤਨੋ ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਹੇ

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे। परे परे ही कौलुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी, पर गृह बेकारी। बुरा पला नहीं सुजी है, अनक बंधन माया। परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया। मन बिखे ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे, जीवत सोई मरे। साध संग माया तरे, नानक सो जन।

बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे। जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत। दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ। जाओ लाओ हाँ के सोचो चितवाओ तौ लाओ दुखन भरे। जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए ते ते बंद परे। जब साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पहे। जौ लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै। नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम सरन बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसे जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औध कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा रहाओ। जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औध सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे रहाओ। वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पाव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ। एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया नदर पई बिखठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवै मन हास्यो लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा। चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत। किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए। सिख्या दीख्या पोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना। कथो न कथनी हुक्म पिछाना नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पिट चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौं मैं करत्यां न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

बिन जगदीश कहां सुख भाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी। बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, अहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे। सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा। बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी। प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्याग कवरे, भाई मिलै सच सच ऐ सच रे। ऐसा राम पग जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहा, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है। प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना। काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए। ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा। ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा। गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ। चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए परम पद।

अंतर साच सहज कर आवै, राजन जान परम गत पावै, सच करनी गुर परम चुकावै, निरपौ कह कर ताड़ी लावै। हां हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा कल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे।

मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिबलाई, बहुते पेख करे पेख धारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप न चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बहरागी, गृही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवै सेवड़ भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मो प्यासा, त्रैगुण भर में नाही निकर वासा। हम हर राखे सतगुरु मिलाया, आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत ना चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारे।

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित न उपजै, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो। अंतरे और तारे अंतरे और तारे, मिलिए प्यारे आन दिन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कहे त्या पारे।

राम नाम वा पराग मैं पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुखै दाते, हाँ विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया धारो, कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा, हाँ सिर अर्पी तस्मित प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता शीस सुथान गुर पै, संग प्रभु देखाया, खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रैन रलियां करे कामनु, मिटे सगलिया देसा, बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई, कर ला लिया आ प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो, सखी मंगल गाया, सब मीत बंद पहर को उपजया, दूत थाउ गुवाया। अनहत वाजे वजह घर मैं, पिर संग सिज विछाई, बिनवंत नानक सहज।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशै, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सतबुद्ध, गुरुदेव सांत सतबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आद जुगा जो जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया, आपै करने जोग, नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं, आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो, आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो, आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

तंदे कहां ब्यापैता हूं, जो एक शाड़ियन कत न जाहू, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान, मन अठ मिलो ना कोए, कहो नानक कृपा पही, भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो, अनक जुगत शास्त्र कर पातो, ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो, कहत सुन तो कह जोग ना हो। ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह, उसन सी तो समसर सब ता कह, ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट में, बिन बूझे फस टोर, नानक गुरमुख सो बुझे, जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया, जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर तब करते, सास सास स्मृत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवन हार मन बिसराना, तारो कृपा जिस गुसाई, एत्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म, आज्ञा पिन ना कोए, आमन जाना तेह मिटै, नानक जेह मन सोए। पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, ए साजन कश कहो उपाया, जाते तरो बिखम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ, कीने तिन प्रभ आप, पासे अपन हाँ हाँ करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा, आपै पापुन बिस्थारा, या जुग जिजत आपै लायो, सो सो पायो जो आप देवायो, उवा का अंतना जाने को, जो जो करे सूफन हो, एक ते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिख सोर, नानक तेह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा, तह तह बंधन पाए, जेह बिद कतू न छूटी है, सकते उकमाहे, हाँ हाँ करते कर मरत, ताको पारिया फार, प्रीत नहीं जो नाम से हो, तौ एउ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे ने बुझे, सो प्रभ सधु संग, लेखे गणतना।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देउ ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया मैं जन्म

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ, एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का कारण करता सो, लिख्यो लेखना मेटत को। नहीं होत कहि दो उबारा, करने हारना पूल नहारा। काहू पंथ दिखा रह आपै, काहू ध्यान परमत पैता पै। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलशित रहे, टूटना जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जानो, नानक नाहे सुमार। पौड़ी खखा खूना कश नहीं, ते समर्थ कै पाहे। जो दे ना सो दे रहो, भावै तै तै जाहे। खर्च खजाना नाम तानो, या भगतन की रास। खिमा गरीबी अंध सहज, जपत रहे गुणतास। खेलै बिकसै अंध स्यो, जा कहो होत कृपाल। सदीव गनीव सुहावने, आराम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना डान ते, जा कहो नदर करी। नानक जो प्रभ पाणिया, पूरी इतना परी। श्लोक गन मन देखो मन माहे, सर पर चलनो लोग। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम या रोग। पौड़ी गग्गा गोबिंद गुण रवो, सा सा जप नीत। कहां बे सा सा देह का, बिलम ना करो मीत। नह बारक नह जोब नह बिरदी कश बंद। ओ बेरा ने बुझिया, जो आए पर जमफंद। ज्ञानी त्यानी चतर पेख, रहन नहीं ए ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह, जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफलते, जा को प्रै सुहाग। सलोक
ਕੋਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਆਨ ਕਹਤੋਂ ਕੋਏ, ਆਜੁਗ ਆਦਿ ਹੁਣ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕੇ ਕੈ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ ਕੱਗਾ ਕਾਲੋ ਮਨੈ ਏਹ, ਬਿਨ ਹਰ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ, ਨੈ ਹੋਵਾ ਨੈ ਹੋਵਨਾ, ਜਤ ਕਾ ਤੋਹੀ ਸਮਾਹੇ। ਕੂਲੈ ਤਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵੈ ਸਰਨਾ, ਨਾਮ ਤਤ ਕਲ ਮੈਂ ਪੁਨੈ ਚਰਨਾ, ਕਾਲ ਕਾਲ ਅਨਕ ਪਛਤਾਵੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਾਂ ਥਿਤ ਪਾਵੈ। ਕੋਲ ਮਹਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਪੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਜਾ ਕਉ ਦੀਆ। ਸਲੋਕ ਗਣ ਕਾਲੇ।

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बहु चरणार बिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बहु चितराई संतन की मन टिक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सद के नानक पाप बिना से कद के। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजमो गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय किन न कालो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहार प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमै अणस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेश। अणा को जाने अपनो एकै टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक उपाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंत सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

देंदे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कहु मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहतूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कलजुग मैं पाया, फिर या ओसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिया फासा, फिर आमनी जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

पौड़ी रारा रेन हो सबजा की, ताजा मान छुटे तेरी बाकी, रण दरगह तो उसी जय पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाय बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की राड़ मिर्त बिन साही, राड़ करत सागत गावारा, जे ही है अंबुद्ध बिकारा। अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त स्यान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन भरे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधित सोधित सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे। शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, पावै खसमता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत स्यानप सगल त्याग, नानक लय सुमाए। पौड़ी ससा स्यानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चले तुहारे साथी, साध सेवा लावे जे आपै, नानक तां को दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन उठे सुख होए, नानक सब मैं रवरया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान। हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण, संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब किछ प्राप्ते हुआ। श्लोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनै गार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत। लाहा माया कारण, दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मनै बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए। तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਗਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਘੜ ਘੜ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪ ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪੈ ਭਰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जबत कव पर न भंग। हर का नाम जन की वड्याई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जबत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास्त पितर थीवे। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूमदान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जबत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मनते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्याप, अनक जतन कर तृष्णा त्राप। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दर गै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं ले पा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै।

जो दिसै सो चल नहार, लपट रहे होता है आंदे अंधार, बटाऊ सो जो लावै नेह, ताको हाथ ना आवै केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीव हर के चरण, मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ कौहरे, मिथ्या नेत्र पेखत परत्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल देह नानक हर हर नाम ले, बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा, उपाव सियानप सगलते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सर

जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे है नानकता की भगत करे है। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जसक है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी। साध कै संग गोचर मिले, साध कै संग सदा प्रफुले। साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावे, साध कै संग सदा सुख पावे। साध संग बसता गोचर लह, साधु कै संग अजर सह। साध कै संग बसे थानी उच्चे, साधु कै संग मैल पहुचे। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहर है, साध कै संग नरक प्रहर है।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा।

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

चार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पै

कई कोट पर दर्ब कौ हेरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आतुम मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रमहे समात, ताका अंतना जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारा को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहि समावै, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करना जोग, ज्योतिष पावे सोई होग, खिन मैं थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मै रहा समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पत तो धारै, आप करै आपन बिचारै, दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किश ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दै दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै,
कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जाना मिले। खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत या बनाई नानक जीवै देख बड़ाई। इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुंथियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरखा कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हार। कबहू निरत करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात। कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की होत रवाल। कबहू होए बह बड़ राजा कबहो पिखारी नीच का साजा। कबहू अप कीरत मह आवै कबहू पला पला कहावै। ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मौन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू से साधक मो ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै। ज्योतिष पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतर राजा मान सो नरक पाती होवत समान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आप स्कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरे बह जोन परमावै। तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तुस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान सो जन नानक दरगै परवान। कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दरगै कौ कैसे गवै। आप स्कौ जो पला कहावै तसे पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे।
सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहां बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबहू कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्थार सब कश उसका ओह करने हार उसते पिन कहो कि

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावै ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापै, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पूजा ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उसरत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास, सब कश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे बिचार, जिसनो कृपा करे

एक आसहर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक वृथी सब जानो देवन कहो एक भगवान जिसके दिया रह अगाए बहुरना तृष्णा लग आए। मारे राखे एको आप मानो कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म भू सुखोए तिसका नाम रा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो उसदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा। वड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाना एत उत कियो सो जी जाना। नाम संग जिसका मन मानिया नानक तने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै जिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ही ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तसे ना लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेव को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब बुझया। जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल। न कि जन्म न किश मरे अपन चलता आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप अनक जुगत रच था प्यो थाप। अबनासी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगले उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल गुर का सब जब पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़भागे। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाए होवे सो होए करने हर पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साव तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस महे समाए ओए सुख निदान उनहु बन आए। आप सको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार। जा कै सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपार। सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप। अपन किया कछु ना होए जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किश तिसका दिया दरबै।
अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बह दातारो तिस दिन हर जाने गावारो जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थमै थमन त्यो गुर का शब्द मन अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावै त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तसै चतार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे आजान कौन बसती आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पासे ती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ता कह सदबलिहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाईए अनक बिगनते साधु रखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाय तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत अवनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे सुमाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर का सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक प्रभ पालनहारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास सुमारै,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गतमत कोई ना लख है, प्रभ के सेवकों को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना रख है अवरना कोए, सर्वजिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मंत्र नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जेह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यो रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियाणप सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना, तिसके संग सिख उदर, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करै प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिके बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिखा हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सतबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੋਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ

सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आंत आग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावाओ, आप जपो अवरै नाम जपावाओ। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, पग जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो है पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटेता, पाप उन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध, तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरक शोक कसै व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुरु कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत तरे, तब कवन निडर कवन कत डर, आपन चलते आप कर नहार, नानक ठाकर अगम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन मरण कहो कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब आप गत्या गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय शरशिदर लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तय कसै पूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नहि सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपै परवीन, तै वेद कतेब कहां कूचीन, जब अपने आप उरतार है, तब सगन अब सगन कहां विचार है, जहे अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी का जानो आप, जय अशाल अशेदा भेद समाया, ऊहा किसै व्याप्त माया, आपस कौ आपै आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश, जय कै एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस

जिस मन बसै ते सच परीखिया मंतन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाए तिसते दूर कहां को जाए उबरै राखण हार ते आए निरपहु जपै सगल पहु मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के परलेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दहस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, समय पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल सांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेशे को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुखी उजला, नै पो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनों समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम है माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतर, हर अमृत हर ओर धार, सब कार तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब ते आईंदी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई, गुरमुखा नो फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध, मनमुख अहंकार सलाह दे, हौं मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद, जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी, नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया, तो जेवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी, तू करता पुरखिया गम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वर्तदा, गुरमुख पर गड़िया, तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़िया, तू करे सो सच्चे होए सी, ता कायत कड़ी है। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान, जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की, ज्यो बोलन तवै सोहन, नानक हरे आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी, तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही, तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही, तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही, सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन, गुर तुठै सज्जन मिलया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा,
सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे, तिन विच्चों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा पला मनाएं दा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिद्दू किश कुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जे साहिब पावै तिस बख्स लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुणिया खबखाणी। नानक सच्चा सच है, बुझ सच समाणी। सलोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरिया आराध्या, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपिया सृजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया नु, मुख आपे दे गिरास। सवे आपे आवरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलवे कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेण न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाहा सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। सलोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुआव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगे सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वथ होवे साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवे, हंकार ना विचों जाए। हंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड़े कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिले प्रभ आए। जो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण हो जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, जो पावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो वंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नामे ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावै। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक घोर मोहे काले खड़िया, जो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जा हर हर नाम ते आवे, हर बाता आख सुनाए नानक, हर करते ए वै पावे। महला चौथा, पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया, ओ गल फरोसी करे बहु तेरी, उसदा बोलिया किसे ना पाया, ओह कर कर हंडे जो रन दुहागण, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै, उसदा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आग सुनाए, पूरे गुर का बचन उपरे आया, गुर सिखा वडियाई पावे गुरपुरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लै जे सतगुर टिके, सो सतगुर जे साहित्य आईंदा, सच सच्चा सतगुर एके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके, ओए बोले किसे ना भावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमाइया, मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने भले नो, हर भावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फले अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया, किरसाणी जमी भाव कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आरा दया, आप तरिया सब जगत।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगै पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगै कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बन जिये हीरे परवाले, विण काया जे होर थे तन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया।

नरक कोर दुखू है, ओथे पकड़ ओह ढोया। कूक पुकार को ना सुने, ओह औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बल्द कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। हर वेखै सुनै नित सब किश, तिदू किश गुजा ना होया। जैसा जैसा बीजै सो लुणै, जेहा पुरब किने बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछै तर गया, जो लोहा काट संगोया। जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वडभागिया सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए। अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत। एक देखिया एक मन्या, इको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस दिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे। हर दरगह ते मुख उजले, तिन कौ सब देखण जाए। जिन निरपो नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर वुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों, दिन तिन पिछै सब जगत छड़ाहे। जन नानक कौ हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन ना मारा दिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए। हर सतगुर मिलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी, सच सच्चा सतगुर अगम है, जिस अंदर हरि ओर धारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा घुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेलेओन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जे सतगुर भावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निधान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखण कौ हर आप होए, होर केती चख चख जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हलत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुरसिखा कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई। हर रख पै सतगुरु की, नित चढ़ै सवाई। गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दी बाण हार, तिन सब आण निवाई। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगह ते मुख उजले, बहु सोभा पाई। जन नानक मंगै धूड़ तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी, हौ आख सलाही सिफत सच, सच सच्चे की वडियाई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आगाई। एह हरा से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुरपूरा हर प्रभ सेविया, मन वजीवा दाई। श्लोक महला चौथा, जिन्ना अंदर उम्र थल, से ही जान सूलिया। हर जाने से ही बिरो,
ਹਾਉ ਤਿਨ ਵਿਟਾਉ ਸਾਧ ਕੁੰਮ ਕੋਲੀਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤਿਨ ਵਿਟਾਉ ਤਲ ਰੋਲੀਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਘਰ ਕਮਾਵੈ ਹਉ ਗੁਲਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ਹਰ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਜੋਰ ਤੇ ਤਿਨ ਭਿੰਨੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਗੁਰ ਪੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲੀਆ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣਵੇ ਹਾਜੀ ਐ ਮਲਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋਏ ਤੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੈ ਲਾਹ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੱਚ ਵਣੰਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ ਸੱਚ ਸੇਵੀ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਹਰ ਰਖਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਡ ਬੇਤਾਲੇ ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੋਹ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਪੀਤਾ ਮਦ ਮਤਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤ ਕਰੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਰ ਹੈ।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

होए, कूड़ कमावे कूड़ उचरे, कूड़ लग्या कूड़ होए, माया मोह सब दुख है, दुख बिनसे दुख रोए, नानक तात लेवे जोड़ ना आवई, जे लोचे सब कोए, जिनको पोते पुन पाया, तिन्ना गुर सब दी सुख होए, पौड़ी महला पंजवा, नानक विचार है संत मुन जना, चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हो मंदे, प्रगट पहार है जाप दे, सब लोग सुन दे, सुख ना पाएन मुग्ध नर, संत नाल खंदे, ओए लोचन ओ ना गुणै नो, ओए अहंकार सड़न दे, ओए विचारे क्या करे, जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसै ना संदे, वैर करन निर्वैर नाल, धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया, से फिरै पवंदे, पेड़ मुडाहू कटिया, तिस डाल सुकंदे, श्लोक महला पंजवां, गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया, पन्नन कर्ण समरथ, प्रभ सदा संभालै मित्र तू, दुख सुभाया लथ, महला पंजवां, खुदियावंत ना जानई, लाज को लाज कबोल, नानक मांगै नाम हर, कर कृपा संजोग, पौड़ी, जेवे हे कर्म कमावंदा, तेवे हे फलते, चबे तत्ता लोहो सार, विच संगै पलते, कत गलावा चालिया, तिन दूत अमल ते, काई आसना पुनिया, नित परमल हिरते, किया ना जाने आकिरत कान, विच जोनी फिरते, सबे तेरा निखुटिया सो, हिर लिया स्तरते, विजन कले ना देवता, ता लया करते, जो जो करते अहम मेयो, चढ़ धरती पड़ते, श्लोक महला तीजा, गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हर परोए, पवित पावन परम बिचारी, जे ओस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम बासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिले पाया नाम धन माल, महला चौथा, सतगुर के जी की सार ना जापै, के पूरा सतगुर भावै, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै, जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै, सतगुर आखै सो कार कमावनो, सो जप कमावै, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावै, विण सतगुर के हुक्मै, जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै, गुर सतगुर अगे को जियो लाए कालै, तिस अगे गुर सिख कार कमावै, जे ठगी आवै ठगी उठ जाए, तिस नेड़ै गुर सिख मूल ना आवै, ब्रह्म विचार नानक आख सुनावै, जेवन सतगुर के मन मन्ने कम कराए, सो जंत महा दुख पावै, पौड़ी, तू सच्चा साहब अत वड्डा, तोहे जेवड़ तू वड वड्डे, जिस तू मिले सो तुद मिले, तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे, जिसनो तू आप मिलाएंदा, सो सतगुर सेवे मन गड़गड्डे, तू सच्चा साहब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे, ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे, सुध गौड़ी की वार महला पंजवां, राय कमाल दी मोज दी की वार, की धुन उपर गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पंजवां, हर हर नाम जो जन जपै, सो आया परवान, तिस जन कै बलिहारण, जिन जपया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया, हर भेटिया पुरख सुजान, संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा तान, महला पंजवां।

कहो कबीर एक ऐ काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन

सूर्य चंद करे उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहाओ, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार लगा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पाव के आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै कहे हुए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होहेंगे तेरे।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निज पत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पांच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ रीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तने ना होई। गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सो काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी। सबै उडानी परम की टाटी, रह न माया बांधी रहाओ। दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी उपर, दुर्मत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहूं कहल। छाड़ को चर्चा यान ना जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना मान।

कौन लाज वहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफिर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहार उसका अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटै, जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो उसका अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा सुन गुफा मैं आसन बैसन। कल्प बिबरजित पंथा मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस, पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन सिर अढ़ाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों का सी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरे मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नलनी सुवटा गहयो मन बौरा रे मायायो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मुकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कहना ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिन सजाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारिंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖ ਚੌ ਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ ਡਰੀਐ।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर दे

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखे रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंगा छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमस सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जो पावा, सो कट शाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे, आस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कते ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक सब तन फार है।

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे को व्यवहार ज्ञानवंत को तत् विचार। जाँ कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन।

जे सो वरिया जीवन खाण, खसम पछाणे सो दिन परवाण। दर्शन देखे दया ना होए, लय दते बिन रह ना कोए। राजा न्याओ करे हथ होए, कहे खुदाए न माने कोए। मानस मूर्त नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान। गुरप्रसाद जाने मेहमान, तां किस दरगह पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सुरत तुन तेती। जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना। अवरना दूजा कहो माई, साहिब मेरा एको है।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौ जल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ। जिन को आप

बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय।

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीख को भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड़े

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विन्ना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त बल

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व डाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, पिरस्यो मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम साम इतना यवर कोई, जो तू राखे तिवही रहना, दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता,

मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नवन पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरम कोई उतरै पार, एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शनहार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठ कीचै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो उपजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे, मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हाउ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच

लख मड़िया कर एक ठे एक रत्ती ले पाहे रहाओ। पिंड पतल मेरी केसव किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ। एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है। आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पे। तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वेलायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे। सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगा।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेसर पट लेई तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा देई मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करेई ज्ञान राओ जब से जय आवै ता नानक भोग करेई आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद भावै नानक तां को मिलै वडाई साचे नाम समावै रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहुल हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सकै कोई जे को दरगह बहुता बोलै नौ पवै बाजारी सतरंज बाजी पक्कै नाही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहियै बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो सह

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे क्यामत छूछे पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारै कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोसना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोसना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ वे छोड़े आपे वेख तेरी वड़े आई जे को ना उतराए वड़ा साध करे मन पाने खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाने राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम्या पारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कौ गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कौ लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुवा विचों आप गवाए सतगुर सेवे तिलना तुमाए निरपव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाने साची बाणी सूचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण्या मोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचा शब्द समाहे सेवट भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो

भगत रत्ता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर जापो सदा त्याए, सदा आनंद होवे दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर

ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहि समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी पव जल तरै, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवा काफी महला तीजा, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिले, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बुझै सोई, मैं सहोदाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नावे जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करे, बूझे सच सोई, हर कै पाणे सा लाहिए, पाणे मन्ने सुख होई, हर कै पाणे जन पदार्थ पाया, माती उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी,
ਜਨਮ ਮਰੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਹਮਰੈ ਹਰ ਧੜਾ ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਸਵਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨ ਵਧਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਏ, ਹਮਰਾ ਹਰ ਧੜਾ ਜਿਨ ਇਹ ਧੜੇ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਹਿ ਪਾਵੈ, ਪਰਾਇਆ ਸ਼ਿਦਰ ਅਟਕ ਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਧੜਾ ਧਰਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਣ ਆਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਲੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ ਰਹਾਓ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਵੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰਿਆ ਪੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖਸਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸਹਿਨਾ।

सुनावै सो मेरा मीत सिखाई। नामहीन गए मूड़ नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा। आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हरे आपे। आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई। फल लागे हर रसकर साई, हर हर नाम जप अंत तरंगा। जप जप नाम गुरमत सा लाही।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह सोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता कै साथ। तिचर कंतबो फिरै उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। इच पूरे मनकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवां, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक कर वासना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमरत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सदगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक पै अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़।

मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ, अब पकड़े निश्चय।

हर हर राय। नाम तेरा जब जीवे नानक ओत पोत मेरे संग सहाय। आसा महला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सदावे अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावे। परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीते सो नानक आख सुनावे। भगत जना का उसका आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा महला पंजवा जो मैं कियो सगल सिंगारा तौ पी मेरा मन न पतियारा। अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो। मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई। माई कहां करोयो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ। वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेख है। पत सोबार मान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै। खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान अवर वस्त तुझ पाहे अमान बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम इस ऊपरले राख्यो गुमान एक वस्त बुझे ता होवे पाक बिन बुझे तू सदा ना पाक कहो नानक गुर कौ कुरबान जिसते पाइय हर पुरख सुजान आसा महला पंजवा एक तुके चौपदे एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे माना रह कैसे मिलो प्यारे एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ चार पहर चौ जुगे समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल परो विछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी जन नानक हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया आसा महला पंजवा हर सेवा मैं परम निधान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सखाई दुख सुख सिमरी तह मौजूद जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीबान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो गुर कृपा ते एह मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा महला पंजवा प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई सतगुर सेव सवै फल पाई मन क्यों बैराग करेंगा सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैण विहानी सह सुभाए आसा महला पंजवा कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय पाई पाहे न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ तोट न आवे निखुट न जाए खाए खर्च मन रया गाए सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना इस तन ते सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानो मुआ गोविंद भगत असर है थिया रहाओ दिन ते सर पर

जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोम नहारा, अवनासी अवगात्या गोचर। उसदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दास

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होश रसमाता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा देव प्राणी, तेस्यो लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही।

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगे काम न आवे छोड़ चले अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है, उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महा विचित्र सुंदर।

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना। सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा। अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे। मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता। जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई। अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई। जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया। पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा। तहां बिकूता जै कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा। जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई। कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला। दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया। आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा। वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने। वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया। अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले। सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल। नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे। मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावे। रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन परबोधे अपना, पाछे अवर रिजावे। राम नाम जप हृदय जापे, मुखते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे। मंतन अर्प तरे गुरे आगे, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे। ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋ ਕੇਹਰ, ਕੁਕਰਤ ਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सुवरण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर कर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यों करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइये पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई यो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सा सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते त्रिपत्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन ए तुत कतै न डोले, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लेहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह करमा, जा कै मन वसिया हरनामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह परम बहुजोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुजै हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ सरनाई, इहां सुख आग्यागत पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हम सेवक तेरा, शरण गही प्रभ गुनी गहेरा रहाओ, तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेख बिकसै कौलार, तू मेरी गत पत तू प्रवान, तू समर्थ मैं तेरा तान, अंदन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रपै अरदास, आसा महला पंजवा, रोवन हारै झूठ कमाना, हासा सो करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवै को हासा सुपावन रहाओ, बाल व्यवस्था ते बरदाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता का परवान, आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर ना जानी, पोर पया बहर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध धरोरी, प्रभ मिले बेकी लालसा, ता ते आलस कहां करोरी रहाओ, कर मैं अमृत आन निसारियो, खिसर गयो पूम पर डारियो, साध मोहे लादी हंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे भरमे अंधारे, नानक मेली सृजनहारे, आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवै तेरी मया, सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ, अनक दुख देवै अवरा कौ, पहुँच ना साकै जन तेरे कौ, दर्श दर्श तेरे

प्रभ की प्रीत सद सोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अररानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवां, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्स सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवां, सगल सुख जप एक है नाम। सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग। जिस पेड़ लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओय आनंद पावे। जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कह ना जावे। रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही। बहुर बहुर तिस लागै पाई, साल ग्राम हम

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवां पंच पदा, जेह पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवां दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जां कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आस

की तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवा माथे त्रिपुटी दृष्ट करूर बोले कौड़ा जेह बाकी फूड सदा भूखी पर जाने दूर ऐसी स्त्री करामो पाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मन मुख मूर आखा गुरु नानक बहां पकड़।

संत त्रिपतासे हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सोजन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरौ एक, गत पाई है गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसिया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भौ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही, भली भांत सब सहि समाही, जा की बख्शना मेटै कोई, मनवा साई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण, ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटे

मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए। अग्नि बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मनवसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवै अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दास सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगनो तिस कहो लगे है, जिस जीत ना आवै तिस जम नेड़ ना आवई, जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगमय अगमय अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी संग चलन को तोसा दीना, गोविंद नाम के ब्योहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम दान गुरपुरे दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे निर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवां। जिसनों तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने दिन दोए चार पोराहा। पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा, जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा। आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाल लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा, सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा अपुष्ट बाते पई सिजरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार मैरतन प्रगासियो, मलीन बुद्ध हशनई। जाओ कृपा गोबिंद पई, सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोई ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते,
मन सगल तृष्ण बुझ गई, एक बोल भीखब तो नाही साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने अगम अगम अगमई, दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो। अन दिनो प्रभति आवो भ्रम पीत जीत मिटावो। निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम। हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया। जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा। हर खसोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो। खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो। खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो। खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा। कर सतारवा आसा वरी इको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां। गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां। ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां। गहड्यो मूड़ नर हां अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पै री सखी थिर थिर चित थिर हां। बन ग्रिव समसर हां अंतर एक पिर हां। बाहर अनेक तर हां राजन योग कर हां। कहो नानक लोग या लोगी री सखी आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां। दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चरान हां। तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना रहाओ। टूटे अन प्राण हां रहो सर्व थान हां। लयो जम भयान हां पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी

सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पावक पार प्राण हा निज कर तिसै थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनी हा जपिया सह तुनी हा साधु रसन पनी हा शूटन बिद सुनी हा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोज जनमुनि हा सर्व का प्रभ धनी हा दुलभ कल दुनी हा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय अलख अपेविय हा ता स्यो प्रीत कर हा बिनस ना जाए मर हा गुरते जाने हा नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वह रस जो बिदे हां ताको सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मुँह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसर हां तिस बिन क्यों सर हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजै मुँह हां करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सब के तिस सुझे हां पतत उधार ले हो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जां स्यों रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत।

आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सफरे हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझे सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती तार पाए मिले पावे पैकार नानक नीच कह बिचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिलर होवे हमें जाए शब्द मल धोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन पूजे सगली पत खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुर चरना गुर बोहिथ शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर जोत बिन नामे सूतक जग शोत दुरमत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहुसंख असंख बिन भय भगती जन बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आ मरे मारे पी आप आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिल नहीं प्रात सूतक अगन पखे जा खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुर प्रसादी हर रस पी जय राग आसा महला पहला आप विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुर माने मनते मन तीरा ऐसा सहो सराफी करे साची नजर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साजरता पैकार सिफत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया जोता नूप त्रिपवन देवा सगर स्वरूप मैं सोतन पल्ले साचा खूट पंच तीन नवचार समावे तारण गगन कल तार रहावे बाहर जा तो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जेवा रस नहीं कया बूजे बेका माता जसो लूजे उत्तम संगति उत्तम होवे गुण कौतावे अवगुण धोवे बिन गुर सेवे सहज ना होवे हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परख है नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख मैली मैल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भक्ति विचारी गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ एह निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुक्म पछान साचा हरख नाहीं ते सोग अमृत ज्ञान मारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई टाहे उसारे हुक्म समावे हुक्मे वरते जोत इस पावे गुर बिन पूरा कोई ना पावे बालक बिरद ना सुरत प्राण पर जोगन बूढ़े अभमान बिन नामे क्या लैस निदान जिसका अंतन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे सेवट भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाणै अंतर की गत गुरमुख जाणै साच शब्द बिन मैल ना पछाणै। निरंकार मै आकार समावै अगल कला ससाई टकावै सो नर गर्भ जोन न आवै। जहां नाम मिलै तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास किल विख दो काटे हर नाम परगास। कर बिचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिलै काल कंटक मारे सच पेलै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता। तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै। देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही। जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जान। दुख मिटै सत शब्द पछानै राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार।
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़। महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदो सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास। उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण ना मिले खुदाए। एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछै सुख। एक ना एहो लिखिया, बै बै रोवै दुख। जो तिस पावै सो थीए, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सैनाई, कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंक सराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हर मां, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वास मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है। दुख सुख तेरा पाना होवे, किस तै जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाईए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है।

ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना तानी दना होई। जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो। औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो। तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाट चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडिया को निमी मेंडा, जे तुद पावे साहेबा तू मैं हूं तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हिको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम। रहाओ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवे दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त ना जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा आप नचीने तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूट ही प्रम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भक्त सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाणे, नानक नाम न विसरे साचे मन माने। आसा महला पहला। मनसा मने समाए ले, पहो जल सच तरना या जुगा दयाल। तू ठाकर तेरी सरना, तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए। गुरमुख नाम त्याई है मन मंदिर पीजै। रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी यार सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख भारी, साचो साहे मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई, अहनस नाम सलाही है सदगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चरण हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसरजे अपने कर आया। रहाओ सच मिले सचियार कूड़ ना पाई है, सचे सोच तलाए बहुन ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है, हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानी है। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणी है, लाहा सच न्याओ मन वसाई है। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहेब हृदय वसाए न पछोता वही। गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोए नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बनहरी आवला। सच टिके कर आए शब्दो तावला। जै देखा तै सोए अवरना जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए। रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई, चलै सदर जाए अंक समावई। सच्चा साहेब मन वसै,
ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ, ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ, ਤਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਤਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सकी भगत रड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकी कीमत ना पवे बिन गुर की सेवै। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगै, पत पाए आसा महला पहला। रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाईए पग निर्बाणी। मैं ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, पाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। पाणे पत पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तैं रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवन दिया लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया ता सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुख अंध ना चेताई क्यों दर्शन पाए। ता जग आया जानिए लाच साचै लिवलावै, ता जग आया जानिए साचै लिवलाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहै निराल मोह कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता अखने आखिए, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाई है विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ताँ कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई, हुक्मर जाई जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठान, नित नित खरा संभालिए सच सबदा पाईए। खोटे नजर नयाब नी ले अगन जलाई है, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई। एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हरसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हरनाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जत पाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आई है, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाई है। रहाओ सच्ची तेरी कार देह दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेक्या धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगै ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रमाण शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

एक तोर पवित पावन है तुद ना में लाए, गुर सेवा ते सुखी उपजाए, सच्चा सब बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए, ना ओन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उत्तवताए, नजर करे जिसे अपनी तिसनो पावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ना पहुंची कथ कहना अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, एहो मन देही सोध तू गुर शब्द विचार, नानक इस देही विच नाम निधान है, पाई है गुर कै हित अपार, आसा महला तीजा सच रतियां सोहागनी, जिन्ना गुर कै सब सिंगार, कर ही सो पिर पाया सच्चै शब्द विचार, अवगण गुणी बगसाया हर स्यों लिवलाई, हर वर पाया कामनी गुरमेल मिलाई रहाओ, एक पिर हदूर ना जाननी दूजे परम पुलाए, क्यों पाए न डोहागनी दुखी रहन विहाए, जिन कै मन सच वसिया सच्ची कार कुमाए, अंदन सेवै सहज स्यों सचे माए समाए, दोहागणी परम भुलाइया कूड़ बोल बिख खाहे, पिर ना जानु अपना सुनी सहज दुख पाहे, सच्चा साहिब एक है मत मन परम भुलाहे, गुर पूछ सेवा करै सच निर्मल मन वसाहे, सोहागणी सदा पिर पाया हौ मैं आप गवाए, पिर सेती अंदन गह रही सच्ची सहज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किश ना पाए, मैं नहीं डोहागनी अंत गई पछताए, सो पिर मेरा एक है एक सो लिवलाए, नानक जे सुख लोड़े कामणी हर का ना मन वसाए, आसा महला तीजा अमृत जिन्ना चखाए, ओन रस आया सह सवाए, सच्चा वे प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए, अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए, मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाओ, मन मुख सदा दोहागणी दर खड़िया बिललाहे, जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे, गुरमुख बीजे सच जम्मै सच नाम वापार, जो इतला है लायन भगती दे भंडार, गुरमुख सदा सोहागणी पै पग सिंगार, अंदन रावै पिर अपना सच रखै उरतार, जिन्ना पिर रावै अपना तिन्ना विटों बल जाओ, सदा पिर कै संग्रह विचों आप गवाए, तन मन शीतल मुख उजले पिर कै पाए प्यार, से सुहावी पिर रावै हमै तृष्णा मार, कर कृपा कर आया गुर कै हित अपार, वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार, सबे गुने बख्शाए लाए उन मेले मिलन हार, नानक आखने आखी है जे सुन तरे प्या, आसा महला तीजा सतगुर ते गुणी उपजै, जा प्रभ मिलै सोए सहजे नाम ते आई है ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है सदा वेख हदूर, सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुखिया पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया, सदा रवै पिर अपना सच्चा नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार, हर सरनाई भज पाओ पाए मुख द्वार, शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए, शब्द हम मारिए सच्चा मैल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिन नाम शोभ ना होए, एह माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए, जिनी नाम विसारिया से मोहे मर जाहे, हरा साधना आयो बिष्टा माए समाहे, एक आपे बख्श मिलाया नो अंदर नामे लाए, सच कमावे सच रहे सच्चे सच समाहे, बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए,
ਬਿਨ ਨਾਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੇਦਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪ ਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਉ ਮੰਨਿਆ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਪਤ ਹੋਏ, ਸਫਲ ਤਿੰਨਾ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਇ ਰਹਾਉ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਅਵਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਨਿਧ ਪਾਇਆ, ਭਰਿਆ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਆਵੈ ਇਸ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਨ ਪਾਏ, ਤਨਾਂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰੀ, ਤੁਰੋ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰ। ਜਿਸਨੋ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਨਾਮ ਵਸੈ ਹਮੈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਤ ਪਤੇ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੈ ਸਵਾਰ, ਉਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਤਿਸ ਕੀ, ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ।

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा संता की जत एको अंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ, जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे, सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे, प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार। बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे, अंत ना काहू जाए। हर जिन्नी चाख्या प्यारे, तृप्त रहया गाए। अंचल गहया साधका नानक, पैव सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिया प्यारे, जा पेटे हर राय। सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा, जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्म मरै बिख खाए। जिस तू मिलै सो मिलै प्यारे, तिसके लागौ पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटई प्यारे, जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहि सुभाए।

करावै सो करी प्यारे, अवर किश कर न जाए। दिन रहण सब सुहावने प्यारे, जे जपिए हर नाओ साची साच साई कार कमावनी प्यारे। तुरमस्तक लेख लिखाए एको आप वर्तदा प्यारे, कट कर रहा समाए। संसार कूप ते उधर लै प्यारे, नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सिरठ जिन साजी, सबना सहव एक भया। सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा मैं जो गुरमुख बूझै, तेसर लेख न होई। ऊड़ै उपमा ता की कीजै, जा कांत न पाया। सेवा करै सही फल पावै, जिनी सच कमाया। गंगे ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जिया मैं एको जाने, ताहो मैं कह न कोई। कक्के केस पुंडर जब हुए।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। प्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निदाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कहो जे होए पवन, बेअंत अंत ना जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण, चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बिकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जै देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप गर लैके नै लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खेनो। तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया, प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ।

ओए जे आखै सो तू है जाणै तिना पे तेरी सार। नानक भगतां पुख सलाहणो सच नाम आधार। सदा आनंद रह।

द्वापर रथ तप का सत अग्यर्थवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड अग्यर्थवा हो। महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी, सच मैं अच्छ साच रह सब।

जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जाद गोपी लै आया बिंद्रावन मैं रंग किया काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे

देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक सो धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगाड़ो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दऊ समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। पूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कष्ट अपना कियो। तीस बरस कष देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर कर ली।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर

मेरे गृह आए राजा राम पधारा रहाओ। नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीसो जाना। कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी जेठ के नाम डराओ रे। सखी सहेली ननद गहेली देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई माया सदमतवारी। बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधया मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना कंठ जने उतमारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन नारायण।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा बूजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे पूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पस ना देख आग काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप ना होई तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। ब्याह लीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो।

आसा से खुरी जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से। पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूं। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद ऐ खैर दी जय बंदगी। आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गौर करे। आज मैं लावां सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ। जे जाना मर जाइए घुम ना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए। शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। सेख है आती जग ना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो। जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया। जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेरा लै कट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम ते आईए बिन नावे पूज ना होए रहाओ। बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जिये मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे। नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले। जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे। वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार। प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार। गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहण आधार। सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै। अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै। सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महले अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेवी मना जित सेव है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ।
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀ ਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾਮ

कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिर नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिंदर गए हर हर दे वड़े आई, धन धन सा बास कह प्रभ जन।

जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, वट भागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भारहीन पापी जम खाया। आप किरपाल किरपा प्रभ धारे, हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुर पुरख जिन हर प्रभ पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावै। मन तन शीतल सब हरिया होवा, वडभागी हर नाम ते आवै। भाई रे मोको कोई आए, मिले हर नाम दृढ़ावै। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावै। रहाओ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर स्यों चित लावै। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुखे अमृत पावै। निर्मल नाम जित मैल ना लागै, गुरमत नाम जपै लिव लावै। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से भागहीन मोहे मर जावै। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अंध करो हर त्यावै। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावै। एको अंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा, कर तीजा।

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावे कमन चुगावे। मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप। हर तन भोजन पाया।

हर हर साध संगत मैं पाया, माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै, हर तन जागत सूता रहाओ। हर तन इशनान हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी, हर हर तार पुराना। हर तन मेरी चिंत विसारी, हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमृत पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै, हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जां कांत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ, तुम कहो हर हर, सदा भजहो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा, मता करै पछम कै ताई, पूर्व ही लै जात। खिन मैं थापो थाप नहारा, अपन हाथ मतांत, स्यानप काहू कामनायात। जो अनरूपयो ठाकर मेरा, होए रही हो बात रहाओ। देश कमावनो तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लस्कर नेव खवास सब त्यागे, जंपर उठ सिदास। होया नान मन हठ की दृढ़ता, आपस कौ जा नात, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो, सोई फिर खात। सह सुभाए पय कृपाला, ते जनकी काटी फास, कहो नानक गुर पूरा भेटिया, प्रवान ग्रस्त उदास। गुजरी महला पंजवा, नाम निधान जिन जन जपयो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, ए ब्याह ते हटे। हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो रहाओ। जो किश कियो सोई पल मान, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने, जो जुगत निशानी। पूर्ण पूर रहो सर्व थाई, आन नकत हूं जाता, घट घट अंतर सर्व निरंतर, रंग रवो रंग राता। पय कृपाल दयाल गोपाला, ता निरपै कै कर आया, काल कलेश मिटे खन भीतर, नानक सहि समाया। गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै रहाओ। माया के संबंध सैन साक, कित ही काम न आया, हर का दास नीच कुल उच्चा, ते संगमन वाइंत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं त्रिशन ना बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बसता गोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांछ, सुख नानके हो पाया। गुजरी महला पंजवा, पंच पदा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा, ऊहा छोड़ तरन मैं आया। चित्र साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछ हूं जाया।
ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ। ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਬੰਧ ਪਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਗ ਮੰਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਯੋ ਬੇਰਾਨਾ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਭਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਤਾਈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨਸਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ। ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੋ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਰੋ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਮਿਆਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਜਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਨ ਮੋਹਨ ਜਨ ਗਹਿ ਨਾ ਸਕਾਹੇ ਗਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਸੁਨਿਆ ਅਵਰ ਅਵਰ ਬਿਧ ਬੁੱਚੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਤਾ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣ ਸੰਗਰਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋਇ ਪੇਖਿਓ ਜਤਰ ਕਥਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਜਹ ਜਹ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਤਿਹਾਇਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਓ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲੜਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਇਓ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਕੀ ਆਪੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀਆਂ ਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਰ ਠੀਲਾ। ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਸ ਰਹਿਓ ਹੀਰੈ ਕੈ ਸੰਗੈ ਪੇਖ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਲੀਲਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨੋਹ ਜੰਗੀਲਾ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਅਰ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ। ਬਲਵੰਤ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ਰਹਾਓ। ਜੀਤ ਜੀਤ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਓਏ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ਮਿਟਾਇਆ।
ठाकर होए आप दयाल, भई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया, ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां, मात पिता भाई सुत बंदप, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ ना चल पोरा। ठाकर तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावै, प्रभ सेती रंग लाई, मन को एह उपदेश दरड़ावै, सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु पांति, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावै, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो था पनहारा, कीमत जाय ना करी, राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो धरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी, अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए सुमाए, तैं परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सरप्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पही करते की, होर आस बिडानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै, जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा, आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाईऐ, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंद सेती कर जाइऐ। जहां ते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा, विश्वंपर जीवन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाय जिस तू राखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा, जन की पैर सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार।
अंगीकार कियो मेरे करता।

रहाओ। मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम, सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम। आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग, तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद, सास सास आराधा।

साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरन ताकी आओ चरण कमल आराद हृदय एक सिमलिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवां गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दोखा नेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद ते आए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण गुजरी महला पंजवां अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण या पार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट गुजरी महला पंजवां कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवणया पार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रकाश पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसे सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्व जोत निरंजन संभू छोडो बो जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन ताते अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत
तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया, उपदेश गुरु मम पुनः न गर्म बेखतज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला, कवन कवन जाचे प्रभ दाते, ताके अंत न पर सुमार, जैसी पूख होए अब अंतर, तू समरासाई देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार, हर हर नाम दे सुख पाईए, तेरी भगत परे भंडार। रहाओ सुन समाद रह लिव लागे, एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तह नाही, आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया, ना सूरज चंद ना ज्योतिया पार, सर्ब लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर, एका नदर सोत्र पवन सार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार। सर्वे जाचक तू प्रभ दाता, दात करे अपने विचार, कोट ते तीस जाचै प्रभ नायक, देंदे तोट नाही भंडार, उंदे भांडे कछ ना समावै, सीधे अमृत पर निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचै, अरिद्ध सिद्ध जाच करै जयकार, जैसी प्यास होए मन अंतर, तैसो जल देवै प्रकार। बड़े भाग गुरसेवै अपना, भेद नाही गुरदेव मुरार, ता कौ काल नाही जम जो है, बूझै अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पह, नाम निरंजन दी जय प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै, हर जस दीजै कृपा धार। गुजरी महला पहला, ऐ जी जन्म मरै आवै फुन जावै, बिन गुर गत नहीं काई, गुरमुख प्राणी नामे राते, नामे गत पत पाई।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, शिव कर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरे, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुद पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहज सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरे आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वर्त, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूद खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कही है। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एको अंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਿਤ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਨੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾ

तनाड आड़ भंडार हर निध होत जिन्ना ना चीर खल मूड खल मुक्त मूड कटाक श्री धर पय गुणमा तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मानो धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत देत दर्शन सरवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार गुजरी की वार महला तीजा सिकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गाउनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नदरी मन वसै गुरमुख सही समाए महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे।

जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लव लाए। पौड़ी टाडी करे पुकार, प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए, पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सोपरा मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एक है सद ही रह हजूर, नानक हुक्म ना मनई ता कर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी जिनको नजर करे, हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए। महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाई है। हर कर्म विधाता गुर शब्दी हर मन वसै, हर सहजे जाता अंदर हो तृष्णा अग्न बुझी। हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए, एसनो कूड़ बोल के खवाली है जे चलद्या नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हो ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा। एको निश्चल नाम तन होर तन आवै जाए, इस तन का ओ तस्कर जो है ना सकई ना ओ चक्का ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे आ, जीए ना ले जाए पूरे गुरते पाई है। मनमुख पल्ले ना पाए, तन वापारी नानका जिन्ना नाम तन खट्या आए। पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया सदा थिर निचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हो मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुरप्रसादी को नाम ते आए, तिस हमें विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवै लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा के नै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है।

मन मुख दुख खाता रसना हरसना चखे ओ फीका बोलाता। जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया से जंत्र बताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो वाखिया जे सच्चा गहर गंभीर। वाह वाह तिसनो वाखिया जे गुणदाता मत धीर। वाह वाह तिसनो वाखिया जे सब मैं रिया समाए। वाह वाह तिसनो वाखिया जे देंदा रिजक संभाए। नानक वाह वाह इको करसा लाही है जे सतगुर दिया दिखाए। महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा कर है मन मुख मर है बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावई दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह कर लिवलाए। नानक वाह वाह कर है से जन निर्मले। त्रिपवन सोजी पाए पौड़ी हर कै पाण गुर मिले। सेवा भगत बनी जै हर कै पाण हर मन वसै। सहजे रस पी जै हर कै पाण सुख पाईए। हर लाहा नितली जै हर कै तख्त बहालीए। निज कर सदा वसी जै हर का पाणा तिन्नी मन्या जिन्ना गुरु मिली जै। श्लोक महला तीजा। वाह वाह से जन सदा कर है जिनको आपे दे बुझाए। वाह वाह करत्या मन निर्मल होवै हमें विच्चों जाए। वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाह वाह करे से जन सोहणे हर तिन कै संग मिलाए। वाह वाह हिरदय उचरा मुखों पी वाह वाह करे ओ। नानक वाह वाह जो कर है हाँ तन मन तिन कहो दे। महला तीजा। वाह वाह साहिब सच है अमृत जा का नाओ। जिन सेव्या तिन फल पाया हाँ तिन बलिहार जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनों दे सो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवै। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच सहि समाणी। आंदन जागे ना सवै जागत रहन विहानी। गुरमति हर चाखिया से पुन प्राणी। बिन गुर किने ना पायो पचमोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जे वड्यावर ना कोए। वाह वाह अगम अथाहो है वाह वाह सच्चा सोए। वाह वाह वे प्रवाहो है वाह वाह करे सोहोए। वाह वाह अमृत नाम है गुरमुख पावे कोए। वाह वाह करमी पाईए आप दया कर दे। नानक वाह वाह गुरमुख पाईए अंदन नाम लए। महला तीजा। बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है विण करमै ना पाया जाए। जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए। जमन मरण ना चुकई हमें विच दुख पाए। जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहाहे। नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी टाडी तिसनो वाखिया जे खसमै तरे प्यार। दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार। ढाडी दर कर पाए सी सच रखे उरतार। ढाडी का महल अगला हर कै नाए प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा। गुजरी जात गवार जा सहो पाए अपना। गुर कै शब्द विचार अंदन हर जप जापना। जे सतगुर मिले तिस पहो पवे सा कुलवंती नार। सा हुकुम पछाण कंत का जिसनो कृपा कीती करतार। ओहो कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार। पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर। अंतर प्रगास मातु

कड़ी मोहतन है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीरवरियाम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ महारोग बिकराल उतने बिदारुओ पाया नाम निदान बहुत खजानिया जिता जन्मया पार आप पछानिया महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव सलोक महला पंजवा उद्यम करेंद्या जियो तू कमावद्या सुख पुंच ते आए दया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत महला पंजवा शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आया चित निहाल साहेब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किश तिसके वस ना कोई बाहरा सो भगता मन उठा सच सुमहरा तेरे दास त्यायन तुद तू रखन वाले आ सिर सबना समरथ नदर निहालिया सलोक महला पंजवा काम क्रोध मदलो मोह दुष्ट बासना निवार राख ले हो प्रभु अपने नानक सद बलिहार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किसह पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजै पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझियै, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपो रे काए तपो रे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्र

कित गली, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, एह चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूल है उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधे हो बोजो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरने आयो राख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंती वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे। सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईए। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे। प्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछे। रहाओ किस हम सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गच्छ। साध संगत की सरणी परिय चरण रेन मन बांछ। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सब हूं मद निरारे। रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण पर्यो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार्यो तार्यो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मार्यो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हार्यो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदार्यो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचार्यो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहार्यो। राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार। मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन पव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना सम